गरीब होके भी महंगी शराब तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना तो मुस्कुरा